0: तथा सुनने में साथ रेडियो ढोल बारा है 103.8 MHz।
1: आस्था अनि भरोसा घर निर्माण को विश्वासिलो आधार अनायारा कन्स्ट्रक्सन एन्ड ट्रेड प्राली गाथे पानी।
2: हजुर, घर निर्माण, बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, विद्यालय आदि निर्माण को लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सोलिड ब्लक सहित विभिन्न किसिम का ब्लक, इट्टा, ढुंगा, गिटी, बालुआ, चोकर सुपथ मूल्य में पाइन्छ।
1: सम्पर्क अनायारा कन्स्ट्रक्सन एन्ड ट्रेड प्राली, शुक्ला गण्डकी 2 गासे पानी, नयाँ पुल र चेवनधाम बाट जान सकिने। प्रोप्राइटर लाल बहादुर गोले र शेरजंग गुरुङ। मोबाइल 98510 88461 र सीजन गुरुङ 97045 40900।

0: गोइला ये नो
1: अनु रोज मैं मैगी हूँ
2: ए मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिले मामु
0: न्यंगी रिमठिम डिंगी जो थन लबे लागिरी न्यंगीला लोलोनो प्रयासकी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
4: नाको रसे मुन्न जाट्नी पट्ट लाफाको के रसे के हुस्नी है।

से प्रयोग दुर्गा थापा मगर पत्र पत्र रेडियो मास बार सिमो मुच श्रोता लाखा पोके थोरले जो दौ आचारले नाको पट्टको झेर्मना आउला घेटमना आउला गा पनि नाको पट्ट पट्टको भनिङ हो दिनम झेर्मनले घेपमनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी नगर समन्वय परिषद ए आदिवासी हौ आवत छिनी हो आवश्यकता देच मूल नारा लानाखिङ मगर धुतो ओ माक बाराई पट्ट पट्ट बिहिबारी गोरा कु बज्यौ थाहा खबर हुने गा करिब करिब जु बज्यौ सम्मोहन पूर्ण प्रसारण शुक्रबार नबिला बाङ्गा बज्यौ ढोर बढाई हाइलाइट हुने यहाँ करिब करिब टु बजेसम्म रेडियो ढोर बढाई काठबुङ सोम थोप्ला के मेरा हज अन्तर मनो आवाज प्रसारण खानके जातले नाकै कानके रेडियो ढोर बढाई फेसबुक पेज हाम्रो पात्रो मोबाइल एप वेबसाइट www.radiodhorbarai.com.np लगिन जातम भिन्टाभरि कठ कठ सिके एकले है त श्रोता लाखाको ना छिनी कानु मगर सङ शुक्ला गण्डकी जात से त कामो खबर लाना हिं सेता केरा हुने है त श्रोता लाखाको इसे जेनाई पहिला काट हिं सिं है त ढिङो बोलले रैया बुमले स्वर तारा श्रीस मगर शब्द रुद्र हिटान मगर संगीत जय कुमार।

0: हो जाएगी। रुक रहे हैं प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस की अभी तक का बना प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के लिए।
1: समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिको पदाधिकारी चयनका लागि भएको मतदान सकिएको छ।

राष्ट्रपाल बालबाबू बालाजी ने पार्टी सदस्य बनाया विषय आपत्तिजनक और लज्जास्पद रहा। वो कांग्रेस को प्रतिक्रिया जेएनयू आंदोलन के अनुसंधान में मानवाधिकार आया।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइम
2: अहिले राति को 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301